नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल

0: के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक

Well, message a quick ta hikna se likhi ase, hello sir, good morning, gana bhal bhal bajai ase, ami khan hunikena bishi enjoy kuri ase, kuikena Paklangso number 1 village name ase Sonjoy Ronghang, Sarsing Terang aro Miss Omphu Terompi, takane likhikena pathai ase. Well, thank you so much likhikena pathai diya karne. Aro yate likhi ase, hello RJ, good RJ Jacob, good morning, kaise ho, khabar main hu. Punam Behipi from Bogajan. Wow, gana tu awesome, badhiya hai. Sunkar bahut achhi lagi. Aur main abhi duty par hoon hospital mein. Koi na likhe aise. Well, Punam Behipi, after such a long time, aapka main message par raha hoon. Kyunki aap to likhne hi band kar diya aur sunne hi band kar diya hoga. Lekin aaj aapka naam dekhke hum bahut achha laga. Anyway, thank you so much. Aap apna duty बहुत ठीक से करिए और मैं भी यहाँ अपना ड्यूटी मेरा ड्यूटी ठीक से कर लेंगे तो ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग. तो लिसनर्स का आपको होनी आप लोग की आलिशा चिनोय महालक्ष्मी और सोनू निगम लगा हुआ से ऐसे फिल्म से दोन गीत लिखे हुए जावेद अख्तर म्यूजिक दिए हुए शंकर ईशान लोई एंड हम वही दोस्त बजी हुआ लोग अपनी गन हुआ वो ट्रैफिक अपडेट

0: FM 103 MHz。
1: Itu akashwani kohima FM terkapan 103 MHz beritia real time traffic update ani dia si kohima town naka. Monkola baru lekina PHQ junction to koli dia northbound that is niche jahkan oleh mudirita se aro southbound junkan opor fina ya se itu oleh light ase halka ase kuna traffic tu janai dia se. अपनी गान जो थी अल्टरनेट रूट अलग रास्ता चलाओ निम्न से कोले ऑल मिनिस्टर्स हिल तो जेल कॉलोनी जो रास्ता चलाओ पर है पीएचक्यू जंक्शन पर लोगे ना मेजर जंक्शन

Yes, listeners, can I call up Nicola message? Can I say to look in a put say, good morning, Ajay Jacob. Do you watch football World Cup? Whom do you support this time? Quigina Rocoville Meta, Fort Mile de Papa Chumukidima Parlikina put say. Well, Rocoville Meta, I don't watch that much also, but anyway, I don't have any particular country that I'm supporting, but just like that, I'm having a good time watching the football game, but I don't have any particular group or country that I support. Good morning, RJ Jacob. Apni laga playlist to ekdom chakas asede ko ina likhi ase. Enjoying with my Euro group. Ratupu and it's me Sally too. Kuna Sally too. Well, thank you so much, Sally too. Likhiyena pathai dia karne. Arjit likhiyena pathai se. Arjit Jacob sir, main sabse purana listeners hu FM Trakupan ka. Aajkal ke new listeners mere samne kuch nahi lagta. Durgesh Nivampuri kuna likhiya se. Well. दुर्गेश जी ऐसा तो मत बोलिए, सब भी लिसनर्स ही है, आप अकेला नहीं है, क्योंकि लिसनर्स तो सब भी लिसनर्स ही होता है. एनीवे थैंक यू सो मच. और निमारी बॉय एंड निमारी गर्ल भी लिखेगी ना पता से. वेल थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. और लिसनर्स ऐसे लिखिए ऐसे सूल रेडियो लिसनर्स ग्रुप दैट कैन बी गुड मॉर्निंग एफएम ट्रैक अप एंड फैमिली को इन्हें लिखी से. वेल थैंक यू सो मच सूल रेडियो लिसनर्स ग्रुप. तो नेक्स्ट करना को हम वो James Laka was the famous gangster. I wrote to get like I say, Mayur Puri music, dear, I say, Pritam.

आशा से अजि लगा खास बातचीत हुनी गिना सब ओवरलैप हुशे गयिना विश्वास करिया से मैं ये मन आवाज प्रोग्राम ये बड़ा स्ट्रेस करिया से थैंक यू।

ये तेरे को लिखी कि ना बजा से हेलो दे आर जे जेकब सर प्लीज प्ले द सॉन्ग कैसे तुम्हें फ्रॉम द मूवी हमको तुमसे प्यार है थैंक यू रेगुलर लिसनर्स से भाईकोन मुंडा डिस्ट्रिक्ट से चराइडियो सुनारी असम परा वेल थैंक यू सो मच लिखी कि ना बताई दिया करने भाईकोन मुंडा अपनी मंगिया गाना जी था बजाय दूले से तो लिसनर्स खान इतिया उन्हीं वो उदित नारायण और अलका याग्निक लगावास्ते फिल्म से हमको तुमसे प्यार है

प्रोग्राम से को हुनु आपन के आशा भोसले लिखा हुआ से फिल्म से सवन की घाटा आर एक गीत करने लिखी गई बताया से चुबा की जमीर उम्मा मुखक चुंगा टाइ टू गाना डेडिकेट कर दिया से टू ऑल द आर्जेस रोकोविल मेहता अमल बसुमतरी अटो एन एडमन दुर्गेश नगनपुरी बाइकोन मुंडा रमेश पात्रो जोगेंद्र रोंगपी बीरेन हांसी अकुजो अतोली लेवी डॉक्टर जुबेन लुंगली बिमल बसुमतरी सुनीता बसुमतरी अंजलि बसुमतरी एंड पुनम बेबी को इन्हें लिखी है से वेल थैंक यू सो मच लिखी गई ना पता है दिया करने तो ये गीत होने लगो इतिया

0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप

एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: नमस्कार, मैं स्नेह कपूर ICS दिल्ली में पिछले 26 साल से एज ए वॉलंटियर काम कर रही हूँ। मेरी आज की वार्ता का विषय है डिबंकिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट कैंसर, यानी कैंसर के बारे में वहम और भ्रांतियों को स्पष्ट करना। पहले यह जानते हैं कि मिथ्स का क्या अर्थ है। बेबुनियाद विचार, सुनी सुनाई बातें या वहम जिनका कोई साइंटिफिक रीजन या प्रूफ नहीं होता, ऐसी बातों से बिना वजह डर या चिंता होने लगती है। यदि ये मिथ्स कैंसर के बारे में हो तो डॉक्टरी सलाह या जांच करवाने में अक्सर देर हो जाती है। बीमारी का डायग्नोस सही समय पर ना हो तो बीमारी फैल जाती है और इलाज की सफलता भी कम हो जाती है। मिथ्स ज्यादातर सोशल मीडिया द्वारा फैलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैंसर के बारे में क्या क्या अफवाहें हैं। जैसे किसी को ये बीमारी हो तो ये इसका मतलब है डेथ सेंटेंस। ऐसा नहीं है, कैंसर का मतलब मौत नहीं है। ये कैंसर का इलाज अगर जल्दी पकड़ा जाए तो पूरा इलाज करके इंसान 100% इसके इलाज से सफल हो सकता है, क्योर हो सकता है।

0: सकता है। अक्सर कहा जाता है कैंसर को रोका नहीं जा सकता, यह गलत है। लगभग 40 से 50% कैंसर जीवन शैली लाइफस्टाइल बदलने से रोके जा सकते हैं। तंबाकू और शराब का सेवन ना करें। जंक फूड को अवॉइड करें। हेल्दी खाना खाना चाहिए, हरी सब्जियां और फलों से भरपूर। रेगुलर व्यायाम करना चाहिए ताकि मोटापा ना आए। अपनी रेगुलर कैंसर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए तो कैंसर को किसी हद तक रोक सकते हैं। ये भ्रांति है कि कैंसर दर्दनाक और छुआछूत की बीमारी है और कैंसर किसी रोगी के पास बैठने से, बात करने से, साथ खाना खाने से कैंसर बढ़ता नहीं है। शुरुआत में ना तो कैंसर की बीमारी में दर्द होता है। धारणा है कि कैंसर आनुवंशिक बीमारी है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर आदि। यह केवल 5 से 10% ही होते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री डॉक्टर को पहले ही बतानी चाहिए। कुछ मिसकंसेप्शंस है कि सेल फोन, माइक्रोवेव के यूज से कैंसर हो सकता है, यह गलत है। इनमें रेडिएशन बहुत वीक होती है, इससे कैंसर नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं चीनी खाना कैंसर को बढ़ावा देता है। चीनी खाने का कैंसर से डायरेक्ट लिंक नहीं होता। हाँ, अधिक मीठा खाने से मोटापा बढ़ता है, शरीर में चर्बी बढ़ती है, यह कैंसर का जोखिम कारक है। कुछ मिथ्स हैं, जैसे बायोप्सी और सर्जरी से कैंसर फैलता है, यह वहम है। डॉक्टर्स बहुत ही सावधानी से स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। बायोप्सी एक महत्वपूर्ण तरीका है कैंसर को कंफर्म करने का। कुछ लोग सोचते हैं मैमोग्राफी बहुत ही असुरक्षित और पेनफुल होती है। मैमोग्राफी एक ब्रेस्ट एक्सरे है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, इसमें बड़ी कम रेडिएशन यूज होती है और इससे कोई खतरा नहीं होता। और ये भी वहम है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी बीमारी से भी अधिक दर्दनाक है। ऐसा नहीं है, ये कैंसर ट्रीटमेंट के तरीके हैं। हाँ, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो रोगी को परेशान करते हैं, जैसे बाल झड़ना, खाना ना खा पाना, वॉमिटिंग होना, कमजोरी महसूस होना। परंतु इलाज समाप्त होने के कुछ हफ्तों में ये साइड इफेक्ट दूर होने लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हर्बल मेडिसिंस या जड़ी बूटियों से बनी दवाएं या अल्टरनेट थेरेपी से कैंसर का इलाज सफल होता है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कई बार कैंसर के इलाज के बाद अल्टरनेट थेरेपी से साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं, पर यह डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। कुछ गलत धारणाएं हैं, जैसे ब्रेस्ट पर चोट लगने से कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट की विधि करवाने से, ऑपरेशन करवाने से कैंसर हो जाता है। डिओडोरेंट यूज करने से, अंडरवर ब्रा यूज करने से, काले रंग की ब्रा यूज करने से कैंसर हो जाता है। ये सब अफवाहें हैं। ब्रेस्ट कैंसर सेल्स या कोशिकाओं का रोग है, भारी चीजों से कैंसर नहीं होता। यह भी कहा जाता है अगर स्तन में गांठ है तो पूरा स्तन काटना ही एक उपाय है, यह गलत है। यदि पहली स्टेज में गांठ का पता चल जाए तो आजकल इतनी मेडिकल एडवांसमेंट हो गई है कि पूरे स्तन को बचाया जा सकता है, केवल एक गांठ को ही निकाला जाता है। इसी तरह महिलाओं के दूसरे कॉमन कैंसर के बारे में कुछ मिथ्स प्रचलित है, जैसे यदि महिला को एचपीवी इन्फेक्शन है तो उसे सर्विकल कैंसर जरूर होगा। एचपीवी इन्फेक्शन पैप स्मीयर टेस्ट से जल्दी पकड़ में आ जाता है, उसका आसानी से इलाज हो सकता है। यदि इन्फेक्शन लंबे समय तक बिना इलाज के चलती रहे तभी कैंसर की स्टेज तक पहुंच सकता है। रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते रहना चाहिए। इसी तरह पुरुषों के प्रोस्टेट कैंसर के बारे में गलत धारणाएं हैं, जैसे PSA का लेवल बढ़ जाए तो इसका अर्थ है प्रोस्टेट कैंसर। जी नहीं, हाई PSA लेवल केवल एक संकेत है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। यदि टेस्ट में हाई लेवल है तो हॉस्पिटल में दिखाए और डॉक्टर दूसरे टेस्ट करवाएंगे, कंफर्म करेंगे और ठीक इलाज करेंगे। एक और मिथ है कि प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के बाद निपुंसकता यानी इम्पोटेंसी हो जाती है, यह भी गलत है। यह सब जानने के बाद मैं केवल यही कहूंगी कि आप सुनी सुनाई बातों का विश्वास ना करें। यदि कोई शक हो तो डॉक्टर की सलाह ले, चौकन्ने रहिए। यदि आपको अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हो तो उसे इग्नोर मत करें, डॉक्टर को दिखाएं, अपनी जीवन शैली को हेल्दी बनाएं, बैलेंस डाइट लें, धूम्रपान शराब से दूरी रखें, नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहना चाहिए। यह सोच गलत है कि तकलीफ होने के पास बाद में ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप हेल्दी हैं तो चेकअप करवाएं, कैंसर जीरो स्टेज पर पकड़ में आ जाए तो जल्दी इलाज पूरा इलाज होना संभव है। कभी भी आसपास के डॉक्टर के पास जाकर अपना कीमती टाइम वेस्ट ना करें, कैंसर की स्टेज बहुत जल्दी बढ़ जाती है। बड़े हॉस्पिटल में जाएं, पूरा इलाज कराएं, इलाज कभी बीच में अधूरा ना छोड़े, तभी कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव है। कैंसर का मतलब मौत नहीं। हमारा डिटेक्शन सेंटर 42 बाबर रोड मेट्रो स्टेशन मंडी हाउस के पास है। साल में एक बार वहां जाकर फुल बॉडी चेकअप बहुत ही कम पैसों में जरूर करवाना चाहिए। यह सोमवार से शुक्रवार 9:30 से 12:30 तक खुला रहता है। इसका फोन नंबर है 011-237-16941, 011-237-16941। इसमें बुकिंग कराने की खास जरूरत नहीं होती। हमारी ऐप है राइज अगेंस्ट कैंसर, इसको एंड्रॉयड स्मार्टफोन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर्स मेन कैंसर्स के बारे में जानकारी देते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9910516562। यहाँ फोन करके कैंसर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कैंसर हो जाए तो घबराना नहीं, आजकल लेटेस्ट इलाज से कैंसर से पूरी तरह मुक्त होकर एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारे आज के स्पॉन्सर्स हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी। धन्यवाद।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम मेरे वाला सॉन्ग। जी हाँ, मेरा वाला सॉन्ग लेकर आपके साथ हूँ मैं एक बार फिर, आपका दोस्त वीर धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लवली लिसनर्स। वो कहते हैं ना कि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो दोस्तों, आप अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, हमारा नंबर है जिस पर आप अपने मनपसंद सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी दो सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट जरूर भेजें और उस पिक्चर का नाम जरूर साथ में भेजें और अपना नाम और शहर का नाम भी लिखकर जरूर भेजें। और फिलहाल कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, एआर रहमान, अरिजीत सिंह और पूजा की आवाज में, फिल्म पीपा से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। और इस प्रोग्राम में आप अपने सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और आप सभी से मैं यही कहूंगा कि आप अपने दो सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट भेजें और साथ में उनकी फिल्मों के नाम भी लिखकर भेजें, ताकि हमें उन गानों को सर्च करने में और चलाने में थोड़ी आसानी होगी। और अपने नाम और शहर के नाम के साथ जरूर भेजें। और पहली जो रिक्वेस्ट हमें मिली है वो है सुदेशना मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने शांतिनगर सोनीपत से भेजी है। और इन्होंने ये फिल्म आतिश का कुमार सानू और का याग्निक की आवाज में इस गीत की फरमाइश भेजी है। तो चलिए इनकी फरमाइश का ये गीत सुनते हैं।

और दोस्तों अगले गाने की जो फरमाइश भेजी है वो भेजी है हमें किन्होंने, वो भेजी है हर किरण सिंह जी ने फारुखाबाद यूपी से, और ये सुनना चाहते हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का कुमार सानू की आवाज में ये खूबसूरत गीत, और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है हितेंद्र दास ने, मानस दास ने, शेफाली दास, मैं माधव दास ने ये भेजी है हमें सोनबिल कुदली असम से। तो आपकी फरमाइश का ये रहा ये गीत।

अगले गीत की हमें फरमाइश भेजी है पंकज ने अमरावती महाराष्ट्र से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसे आशा भोसले और अभिजीत की आवाज में ये खूबसूरत गीत।

और अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है मनमोहन सिंह जी ने रामपुर जिला मडवा से, हसनपुर गांव से। ये सुनना चाहते हैं बंटी बबली का ये गीत।

दोस्तों अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, ये सुनना चाहते हैं फिल्म जूली का ये खूबसूरत गीत। और साथ ही साथ हमारे और भी कुछ लिसनर हैं जो यही गीत सुनना चाहते हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, ये सुनना चाहते हैं ये सॉन्ग। इन्होंने मैसेज भेजा है जिला मुरादाबाद से, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। तो आपकी फरमाइश ये रही।

और अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है नौशाद चौधरी, अकरम चौधरी, आतिफ चौधरी और इमराना चौधरी ने राजीव नगर मंडावली दिल्ली से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म प्यार किया तो डरना का, ये खूबसूरत गीत कमाल खान की आवाज़ में।

और दोस्तों, अगली जो फरमाइश हमें भेजी है वो भेजी है हमारे एक लिसनर जो हैं, उन्होंने भेजी है दिग्दर्शन और कविता ने मेरठ कैंट से, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म करण अर्जुन का ये खूबसूरत गीत।

0: और अगले गीत की फरमाइश जो भेजी है उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्त, और उसके बाद लौटते हैं। दोस्तों आप भी अपने गीतों की फरमाइश भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और प्रोग्राम तो आपको पता ही है, मेरा वाला सॉन्ग।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। और अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ने ये भेजी है फिल्म, जिस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं उसका फिल्म का नाम है सागर। तो किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये रहा गीत।

और अगले गीत की जो फरमाइश हमें भेजी है वो भेजी है सुखलाल बाला ने वेस्ट बंगाल से, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म गैंगस्टर का ये गीत।

अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है देवेंद्र ने इंगटी करबी असम से। ये फिल्म ये सुनना चाहते हैं फिल्म द ट्रेन से, ये खूबसूरत गीत।

बहुत सारे मैसेजेस आए हैं दोस्त, तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय के अभाव के कारण हम मैसेज आपके नहीं ले पाए, और आप सबको डेडिकेट करके ये गाना चला रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब वीर दमन को दीजिए इजाजत, अगला प्रोग्राम रश्मि लेकर आपके साथ रहेंगी, फिल्म के साथ साथ प्रोग्राम आशियाना लेकर, और अब वीर दमन को दीजिए इजाजत, बाय।

जी हाँ, और आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि। जी हाँ दोस्तों, चिंता हो गई है, समर वेकेशंस खत्म होने वाली हैं, लेकिन इस वेकेशंस कहीं घूमने नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, आपके लिए हम हैं ना भाई, हम हैं, क्योंकि जो थोड़े बहुत दिन बचे हैं आपके समर वेकेशंस के, उनके लिए प्लान लेकर आ गए हैं हम। कहाँ पर? जी हाँ, आपके अपने चैनल FM रेनबो पर, और प्रोग्राम है आपका जाना पहचाना रेनबो डेस्टिनेशंस। तो आज कहाँ पर मैं आपको सैर कराऊंगी, साथ में आपको बताऊंगी कि कितनी दूर है दिल्ली से ये जगह, ताकि आप छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में, थोड़ी सी जगह में आप जा सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और ये रिग्रेट बिल्कुल नहीं करेंगे कि हाँ भाई छुट्टियां आई थी और ऐसे ही चली गई। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रश्मि।

जी हाँ दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां आते ही ना मन करता है कि कहीं दूर निकल जाएं, जहाँ ठंडी हवाएं हों, खूबसूरत नज़ारे हों और रोज़मर्रा की भागदौड़ से थोड़ी सी राहत मिले, है ना। लेकिन अक्सर सवाल ये होता है कि जाए कहाँ, और ख़ास तौर पे जब आपको लग रहा हो कि अब वेकेशंस ख़त्म होने वाली हैं और समय बिल्कुल नहीं बचा। तो जाती हुई समर वेकेशंस के आखिरी के कुछ दिनों में क्या हम कोई प्लान बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं जनाब। कई बार ये भी होता है ना कि काम के चलते हम बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि छुट्टियां भी कम मिल रही हैं। तो वो कम छुट्टियों की ऐसी शानदार जगहों पर आज मैं ले जाना चाह रही हूँ जो दिल्ली के बेहद पास है, और आप चंद घंटों का सफ़र तय करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं और आराम से अपनी छुट्टियाँ बिता सकते हैं। तो मैंने आज क्या क्या प्लान किया है? मैंने सबसे पहले जो प्लान किया है ना आपको घुमाने का, वो है नैनीताल। भाई नैनीताल दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, उत्तराखंड की वादियों के पास में है, और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लाखों पर्यटक है ना, उनका फेवरेट जो टूरिस्ट प्लेस है वो है नैनीताल। अब खास क्या है यहाँ पर वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनाऊंगी ये प्यारा सा ट्रैक।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी कौन, मैं हूं रॉकिंग रश्मि और साथ में लेकर आई हूं आज आपके लिए रेनबो डेस्टिनेशंस, जिसमें हम बात कर रहे हैं किस बारे में भाई। हम आज बात कर रहे हैं कि दिल्ली के पास में जो थोड़ी सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आप कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं और साथ साथ अपनी वेकेशंस मना सकते हैं।

0: लेकिन वेकेशंस कहाँ मना रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रही हूँ आज नैनीताल, जो दिल्ली से बहुत ही पास है, लगभग 300 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर देखने लायक जो चीज़ें हैं ना, वो है नैनी झील। बहुत फेमस झील है, बहुत ही शांत वातावरण है, साथ में स्नो व्यू मंदिर आप देख सकते हैं, साथ में है माल रोड जहाँ पर आप लोकल शॉपिंग कर सकते हैं। और यदि आप अभी तक वहाँ नहीं गए हैं ना, तो आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। नैनीताल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और दिल्ली के इतने पास होकर ना आप जाकर वापस भी आ सकते हैं हार्डली 2-3 दिनों में। इसके अलावा वहाँ नियर बाय में और क्या क्या है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
5: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
6: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
7: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
6: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
8: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

जी आप बात करते हैं भीमताल और सात ताल की। भीमताल की यदि बात करें ना तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल के पास ये स्थित है और बहुत ही फेमस और समृद्ध पर्यटन स्थल है। और यदि सात ताल की बात करें तो भीमताल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये सात ताल, और ये दोनों ही ताल बहुत ही शांत और प्राकृतिक रूप से समृद्ध हैं, अपनी हरी भरी वादियों और साफ पानी के लिए जाने जाते हैं। यदि आप बात करें भीमताल की तो झील के बीचों बीच स्थित एक टापू है जहां पर सुंदर सा एक रेस्टोरेंट भी है, एक्वेरियम भी है। और खास बात इसकी ऐतिहासिक रूप से ये कही जाती है कि झील के किनारे एक प्रसिद्ध भीमेश्वर महादेव मंदिर है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम द्वारा बनवाया गया था। साथ साथ यहाँ पर आकर्षण की यदि हम बात करें तो बटरफ्लाई म्यूजियम है और जिसमें हजारों तरह की तितलियां और कीड़े मकौड़े देखे जा सकते हैं। और गतिविधियों के मामले में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसे आप कर सकते हैं, जिनमें बोटिंग मेन है, इसके अलावा माउंटेन बाइकिंग और जिप लाइनिंग भी है। तो भाई आप बिल्कुल कभी भी जाएं और यहाँ पर जाकर आप आनंद ले सकते हैं। और इसके अलावा सात ताल की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगेन एक छोटा सा ब्रेक।

जी हाँ, तो सात ताल की यदि हम बात करें ना, तो इन झीलों के नाम गरुण ताल, नल, दमयंती ताल, पूर्णा ताल, राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल और सूखा ताल है। और यहाँ खास तौर पे आप कयाकिंग, बोटिंग, ट्रैकिंग, एंगलिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे एक्टिविटीज कर सकते हैं। साथ में कहा जाता है कि ये जो ताल है ना, ये महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जहाँ पर नल दमयंती ताल का नाम राजा नल और दमयंती के नाम पर रखा गया है। दिल्ली से यदि इसकी दूरी देखें तो लगभग वही 320-330 किलोमीटर के आसपास है। नैनीताल से केवल 23 किलोमीटर और भीमताल से 4-5 किलोमीटर है। और यहाँ घूमने का जो टाइम है ना, वो सबसे बढ़िया टाइम ही है ये जून का। मार्च से जून आप जा सकते हैं, साथ में अक्टूबर से फरवरी तक भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो देखिए ना, बिल्कुल सही मैंने आपको टाइम बताया है कि आप जाएं और एंजॉय कर सकते हैं सात ताल और भीमताल।

जी हाँ, और इन द लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ वो जगह जो दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ लगभग 240 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर बसा ऋषिकेश, विश्व की योग राजधानी और साथ साथ साहसिक खेलों का प्रमुख केंद्र भी कह सकते हैं हम इसको, जहाँ पर आप बहुत से आई जो एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं, साथ साथ त्रिवेणी घाट और गंगा आरती देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ की शाम की गंगा आरती ना बेहद प्रसिद्ध है और मन को शांति देने वाली है। साथ साथ राम झूला और लक्ष्मण झूला बहुत ही यहाँ के पहचान बिंदु है, ये कह सकते हैं कि जो वहाँ जाता है वो इन दो जगह पर ना जाए और इन झूलों का लुत्फ ना ले पाए। कुछ अलग ही तरह के झूले हैं, जाइए ज़रूर यदि अभी तक नहीं गए हैं। इसके अलावा बीटल्स आश्रम है, नीर वाटरफॉल है और साथ में शिवपुरी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है रिवर राफ्टिंग के लिए, और साथ में घाटों पर जो शांति और आध्यात्म का रूप आपको अद्भुत संगम देखने को मिलता है ना, वो वाकई में देखने लायक है। यदि आपके पास है कुछ ही दिन छुट्टियों के बच्चे हैं और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा समय आप कहीं बाहर जाकर नहीं बिता सकते, तो आप यहाँ जाइए, ज़रूर जाइए, एंजॉय कीजिए और साथ में थोड़े से अपने मन को सुकून दे जाइए। आज रेनबो डेस्टिनेशंस में बस इतना ही, क्योंकि इसके बाद रहेगा एक स्पॉन्सर प्रोग्राम और मैं कहाँ हूँ, मैं फ़िलहाल आपके साथ यहीं पर हूँ और एक बार फिर मुलाकात होगी 4:05 पर, लेकर आऊंगी प्रोग्राम। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर की ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है।

0: जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday to you, Stephen!
5: Thank you. How are
3: Happy birthday, Stephen.
4: Thank you,
3: congratulations.
4: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
5: Oh, fine.
4: Thanks for

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं नहीं,
2: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन

0: 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
1: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। पचासी में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी,
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तक

0: शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
3: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
4: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
5: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौरमंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।

0: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
1: आग का गोला?
0: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
2: सूरज।
0: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
3: बहुत आसान पूछते हो।
0: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
3: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
0: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
2: हाँ।
0: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
3: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
4: वो तारा होता है।
0: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
5: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही, एकदम
4: सही। वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
3: धूप से हाँ। एक अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
3: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत
4: और
0: अच्छे।
4: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ बिल्कुल,
3: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
3: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
5: हाँ। जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
3: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
3: वो तेज चलती है, लगता है तेजी चल रही है।
4: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
4: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
3: वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
4: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
3: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
3: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ
4: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
2: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
3: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला लेकिन
2: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
2: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
2: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
2: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
2: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये

0: Phone number is 0370-224-3036. I'll repeat my phone number quickly. It's 0370-224-3036. That you can call Gribi or you can naga git request Gribi. And we have the first caller with us. Let us check out who is the first lucky caller. Hello. Hello.
1: Hello, Sarji, namaskar.
0: Hello, namaskar. Who is on the line?
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम माया तहसील रेटी जिला सीओर एमटी से बोल रहा हूँ।
0: रमेश जी कैसा है?
1: मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, काम कर रहा हूँ दुकान पे।
0: क्या बात है।
1: और आपके कार्यक्रम में फोन लगा रहा हूँ तो आज पहला फोन लग गया, क्या क्या बात है, वाह
0: किस्मत।
1: आपको धन्यवाद मेरा फोन रिसीव करने के लिए।
0: जी जी जी, आपका किस्मत इतना अच्छा है। और पता है आज का दिन कैसा रहा, आज का सेल कैसा रहा?
1: आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, गर्मी तो रहे है लेकिन बढ़िया रहा, मस्त है आज का दिन।
0: क्या बात है। और इसके साथ आप पता है आज कौन सा वाला गीत सुना चाहूंगा?
1: खूबसूरत फिल्म का है, मेरा एक सपना है देखूं तुझे सपने में।
0: खूबसूरत फिल्म का
1: जी
0: मैं देखता हूँ। खूबसूरत फिल्म का मेरा एक सपना
1: जी,
0: मेरा एक सपना। हाँ हाँ यस
1: ए?
0: मिल गया यस। और पता है किस किस को यह डेडिकेट करना चाहूंगा?
1: सबसे पहले तो आपको करेंगे।
0: थैंक यू थैंक यू।
1: तो फिर हमारे मित्र हैं भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, केसी सिंह राजपूत है, मंगला चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, वो धर्मवीर है दिल्ली से, लोकेंद्र वर्मा है उज्जैन से, और तनुश्री है, और रक्कू जी रक्कू विले मेथा आशुतोष जी जी आशुतोष जी विदिशा से है, संगीता जी है, पूनम जी है कानपुर से, पूर्णिमा जी है विजयपुरम से, अविनाश जी है राकेश जी है सिमला से, विमल है असम से, अमल है तो अमल भस्मकारी गोल्डी जी, तो अमर सिंह साहू भाई को मुंडा रमेश पात्रे जी।
0: जी राकेश जी, आपसे जब बात हो रहा है ना
1: जी,
0: मैं बहुत मतलब आपका ये जो क्या है, आपका जो मुस्कुराहट आपका चेहरा में होता है ना
1: जी, जी।
0: वो यहाँ तक पहुँचता है और इतना इतना मतलब इतना अच्छा वाइब दिलाता है सबको। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया,
1: हमको आपसे बहुत प्रेम है।
0: अरे यार थैंक यू सो मच। तो रमेश जी सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग। ओके बाय बाय
1: बाय बाय।
0: तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इखान लगा रेगुलर लिसनर था कि ऐसे माथिया ब्रदेश पर रमेश प्रजापति ताहिर रिक्वेस्ट कर लगा गीत अमिखान होने अब खूबसूरत फिल्म रा कुमार सनु और कविता कृष्णा मूर्ति अवस्थे म्यूजिक दिस इज चैटिन ललित लिरिक्स गुलजार और ताई नाम लो सब के

0: And my dear friends, we have the next caller with us. Hello.
1: Good evening, sir.
0: Hello, good evening. Danushree?
1: Yes, Danushree is talking about Brahmguna, Rejila, Satara, Maharashtra.
0: Okay, Danushree, welcome to Swagar. And do you know what you want to hear today?
1: Sir, our hands are still raining, so it's called Milan.
0: Okay, Milan. Milan, which one is it?
1: सावन का महीना पवन करे सर।
0: सावन का महीना मिलान का फिल्म से सावन का महीना ये तर नहीं देखता है।
1: नहीं।
0: सावन का महीना कोई और दूसरा फिल्म का हो सकता है। मैं देखता हूँ।
1: दूसरे फिल्म बत।
0: नहीं मैं देखता हूँ सावन का महीना होता है आइए मिलान की रात। यस। तो आइए मिलान की रात ये वाला फिल्म से हम बजा देंगे।
1: जैसा ना देंगे।
0: और किसी को टिकट करना चाहूँगा?
1: जी अभी तो सर बारिश की वजह से हमारा डीटीएच बंद है तो मैं कार्यक्रम सुन नहीं पा रही हूँ पर हाँ मेरे दोस्त को तो मैं गाना जरूर सुनाऊंगी।
0: okay.
1: पहले तो आप है
0: थैंक यू
1: और भगवान सिंह परमार है और हमारे पहले कॉल लगातार रमेश प्रजापति उनको भी डेडिकेट रहेगा और अमोल बस्माचारी है और प्रेम सिंह सिसरिया है और हमारे सभी श्रोताओं को लाइव सुन रहे हैं उनको।
0: ओके धनुश्री जी आज डीटीएच बंद होने से भी आप मोबाइल ऐप से आप सुन सकता है ठीक है?
1: जी सर मोबाइल ऐप से सुन सकती हूँ पर मेरे पास छोटा मोबाइल है और

0: वेल माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉलर मिखला रे थके से हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: हेलो हु इज ऑन द लाइन
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओके राकेश जी और बताइए प्रोग्राम में स्वागत है और आज का दिन कैसा रहा?
1: आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। आज थोड़ी बारिश हुई थी हल्की हल्की फुल्की
0: जी
1: और अभी भी बारिश चल रही है।
0: क्या बात है और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुना चाहूंगा?
1: आज मुझे ये सुनता चाहत मूवी है।
0: फिल्म का नाम?
1: चाहत
0: चाहत
1: चाहत
0: मैं देखता हूँ। चाहत है और कौन सा वाला गीत?
1: उसमें एक गाना है दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं
0: दिल की तन्हाई को। मैं आपको बताता हूँ ठीक है
1: जी।
0: आप सुनिए तेरे सूरत निकाहों में
1: जी।
0: एक बूंदा मेरी हाँ ना दिल को चैन है मोहब्बत में जीना मोहब्बत में मरना
1: जी।
0: दिल दुखानी से ही खर करार आई तो जिससे चुपके चुपके पड़ता हूँ जब मेरे सामने चांद है आसमान की। और नेक्स्ट है तेरे कसम तेरी राहों में
1: और ये तो पुरानी वाली होगी।
0: अच्छा पुरानी वाली
1: नई
0: वाले मेरा पास नहीं है सॉरी।
1: अच्छा कोई नहीं तो मैं आपको दूसरा बोल देता हूँ
0: ठीक है।
1: तो क्या मुस्कान
0: होगा क्यों नहीं कौन सा वाला गीत?
1: उसमें एक गाना है इश्क रुलाता है
0: इश्क हंसता है
1: हंसता है। हाँ जी
0: आप रुलाता है
1: इश्क हंसता है।
0: ओके और इतना लंबा गीत है ये आप किस किस को ये सुनना चाहूंगा?
1: तो सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू।
1: तो रमेश प्रजापति है पूरण वर्मा है अविनाश

0: भी हैं, भगवान से परमार है, रमेश पात्र हैं और रुखो मिला मिठा है और विमल भस्माचार्य हैं और अमल भस्माचार्य हैं और जितने भी तमाम सुनने वाले श्रोता है और सभी के लिए गाना डेडिकेट है।
1: ठीक है, थैंक यू सो मच रकेश जी, आपसे बात हुआ अच्छा लगा, सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
0: जी जी धन्यवाद,
1: यू वेलकम, बाय। My dear friends, Ragesh Shimla Prabh request for Ragesh.

0: Well, my dear friends, we have the next caller with us. Hello.
1: जय माता दी.
0: जय माता दी, प्रोग्राम में स्वागत है.
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा.
0: पूरन वर्मा जी,
1: आपसे बात कर रहा हूँ. डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमल बगला.
0: जी पूरन वर्मा जी, प्रोग्राम में स्वागत है. और बताइए कि कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा आज?
1: सर मैं आज सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा जानवर.
0: जानवर, ठीक है
1: जी. और बता दो मेरे को गाना.
0: हाँ, जानवर फिल्म है मेरा पास. और कौन सा वाला गीत?
1: इसमें गाना आप बताओ सर, इसमें कौन कौन से गाने हैं?
0: जानवर फिल्म का मैं बताता हूँ आपको. आंखों आंखों में एक है, देखो आप दो एक है, मेरे मोहब्बत तुमसे अच्छा लाल चारी. मेरे संग आइए गुलाब गुलाबदान, हमारे गांव कोई आएगा, खुली फलक में जूता घुसा, मैं चले ये उम्र है क्या रंगी और है आवाज दाकी.
1: नई वाली देखो सर, नई वाली पुरानी आपके पास नई भी है, अगर नई हो तो उसमें गाना है मेरा यार दिलदार बड़ा सोना तू दे दू सारा प्यार इनको, ऐसा कुछ गाना है.
0: अच्छा,
1: नई वाली
0: नई वाले नई वाले हाँ बताए. मेरा यार दिल यार
1: मेरा यार दिलदार.
0: जी जी जी, मिल गया
1: सारा प्यार इसको.
0: जी जी, और बताइए किस किस को यह डेडिकेट करना चाहूंगा?
1: मिल गया सर गाना.
0: जी मिल गया
1: जी. सबसे पहले आप सुनेंगे.
0: थैंक यू.
1: और मेरा दोस्त राकेश का भी कॉल लगा था उनके लिए.
0: जी.
1: और भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, अमल है, बिमल है, रमेश पात्र है, और आशुदो देवनाथ, संगीता जी, और जिसका भी नाम कॉलर का छूट गया मेरे से, उन श्रोताओं के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ सर ये गाना.
0: ओके ठीक है, थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद.
0: ओके, यू वेलकम. बाय. तो माय डियर फ्रेंड्स, अमिकान ही हुनी अबो जनवार फिल्म रा अलका यज्ञिक अरु सुन निकम अवस्थे जसपिंदर नारुला अवस्थे म्यूजिक दिशा अनंत और मिलिंद लिरिक समय राजस्थान रा मिखाना लिसनर रे रिक्वेस्ट को लगा गीत है कैसे हुनी की ना एंजॉय करबी.

0: And my dear friends, we have the next caller with us. Hello.
1: Hello.
0: Hello, who is on the line?
1: Prem Singh Sisodia bol raha hu, Gram Basura, Tehsil Nagpur, Jila Ujjain se.
0: Okay, Prem Singh ji, program mein swagat hai. Aur aaj ka din kaisa raha?
1: Bahut acha din gaya aaj hamara.
0: Kya baat hai?
1: Barish bhi halki si yahan pe.
0: Ji. Aur bataiye iska saath kaun sa wala geet suna jaunga?
1: Sanam Bewafa.
0: Sanam Bewafa.
1: Ha, tune dil mera toda. लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हमारा दिल तो किसी ने भी नहीं तोड़ा है बट सॉन्ग बहुत बड़ा अच्छा लगता है सुनने में।
0: लेकिन यहाँ मेरा म्यूजिक बैंक में सना बेवफा शायद नहीं है
1: जी। ये वाला नहीं है?
0: ये वाला नहीं है। आप क्या और किसी दूसरा
1: दूसरा बताऊं? फिर आई मिलन की रात।
0: आइए मिलन की रात है
1: जी। इसमें कौन कौन से सॉन्ग है?
0: आइए मिलन की रात से एक पहले बचा चुका है, इश्क का रुख। अच्छा, कनगा टाइटल सॉन्ग पता है।
1: हाँ।
0: इश्क का रुख लगा, कसम से कितने दिनों के बाद।
1: मैं कितने दिनों के बाद, ये वाला।
0: अच्छा ठीक है, और बताइए किस किस को यह डेडिकेट करना चाहूंगा?
1: भगवान सिंह परमार, आशुतोष अविनाश संगीता जी, आपको रहेगा डेडिकेट।
0: थैंक यू।
1: और सबसे पहले कॉल आया था ना रमेश पात्रे का, रमेश जी का
0: जी,
1: उनका ये रहेगा
0: जी।
1: और हाँ, तनुश्री के लिए भी रहेगा।
0: ओके ओके।
1: उनका जीटीएस नहीं चल रहा था, लेकिन अभी पता नहीं बारिश कम हो गई तो चालू हो गया होगा।
0: अच्छा, वही उम्मीद करता है।
1: हाँ,
0: ठीक है। थैंक यू सो मच प्रेम सिंह सरसुदिया जी, आप से बात हुआ अच्छा लगा, और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
1: थैंक यू सो मच,
0: यू वेलकम। बाय माय डियर फ्रेंड्स, प्रेम सिंह सरसुदिया उज्जैन मध्य प्रदेश में दाही रिक्वेस्ट को लगा गीत अमी खान खुनी अब अलका यज्ञिक सुन निकम गुआ गीत। वेल ये दाही रिक्वेस्ट को लगा गीत आइए मिलान की रात फिल्म मोहम्मद अजीज और अनुरोध पटवाल अवस्था अमी खान खुनी हब तई नाम लुआ सबके यू गीत डेडिकेट कर दिए से म्यूजिक दिशा आनंद और मिलिंद लिरिक्स समय खुनी किना एंजॉय करबी माई डियर फ्रेंड्स।

0: प्रजापति जी और तमाम सुनने वाले और स्पेशली आप सर।
1: थैंक यू सो मच। और शिवा जी बताइए, आज पहले बार मैं आपसे बात हो रहा है?
0: जी बिल्कुल सर, पहली बार बात हो रहा है आपसे।
1: और मतलब आप कितना बार, मतलब कैसे सुनता है ये आकाशवाणी कोहिमा का कार्यक्रम?
0: सर जी डीटीएच के माध्यम से भी सुन लेते हैं, मोबाइल ऐप से भी सुन लेते हैं।
1: ओके, और रेगुलर मतलब रोज सुनता है या कभी कभी?
0: सर जी खासतौर से आपका ये प्रोग्राम तो मिस नहीं होता हमसे।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही चूरते रहे ना आकाशवाणी कोहिमा FM 51 का साथ, और सुनते रहना, ठीक है
0: जी। थैंक यू सर।
1: ओके, यू वेलकम, बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतु ही लास्ट लकी कॉलर था किया से, और ताई रिक्वेस्ट कर लगा गीत अमी खान हुनिया हबो दीवाना फिल्म रो कुमार सानू लगा वास्ते, म्यूजिक दिसे नदीम और श्रवण, लिरिक्स समीर, और ताई नाम लुआ सब के इतु गीत डेडिकेट कर दिया से। और माय डियर फ्रेंड्स, आज कुन कुन कॉल करिशे और इतु लाइव फोन इन प्रोग्राम दे हिस्सा लो शब निखान सब के बेशी खुशी बात जानाई दिए से, और भी नेक्स्ट टाइम भी इतु निशन अपनी खान सब भी हिस्सा लो बोले कारण कोई दिए से। और माय डियर फ्रेंड्स, अपनी खान लगा नागालैंड और याते नॉर्थ ईस्ट लगा लिसनर्स खान कुन कुन याते हिस्सा लोबले पारा ना अपनी खान सब भी कोशिश करबले कारण भी कोई दिए से, स्पेशली अमी खान लगा नागालैंड लगा लिसनर्स खान इमान दो याते हिस्सा ना लुआ लगा दिखी पाई से, यू कारण अमी खान सब भी याते भी हिस्सा लोब कारण भी कोई दिए से। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, अपनी खान सब लोग खोटा पाटी किना खोटा कोई किना बेसि खुशी पाई। और इतना लास्ट गीत शुनिया हम दीवाना फिल्म शिवा अमी खान लगा लिसनर ता रिक्वेस्ट कर लगा শুনিকে না এনজয় করবি। আর 7:10 হলে নাগামিস্ত রিজনাল খবর দিয়া শুনব। তো আপনি সবই হ্যাভ এ গ্রেট আওয়ার্স এহেড মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। আর আজ রাতে 9:30 PM দিয়ে আপনি সবই একটা স্পেশাল প্লে লিস্ট শুনব কারণে আপনি সব কিবি ইনভাইট করে আছে। তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, শুনিবি লাস্ট গীত দিওয়ানা ফিল্ম।

0: FM Dragon Band.
1: 103 MHz. नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और

0: युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
0: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास

0: और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशुराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President JD Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Chen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. The Home Minister stressed that better coordination and the use of technology are essential for strengthening the country's

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।